सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है, ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओरिडो।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार मुझे 10GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो.

अरे भाई, कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अंकन की ख्वाहिश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने। जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: Hi everyone, this is Benny Real here. Benny Real here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: कुसुम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: कुसुम

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय गाइस, इज अबार्ट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी। रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन। यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास। रेडियो
2: ऑलिव, आई एम नंबर वन। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, एग्जीक्यूटिव only on Radio Olive 106.3 FM. In conversation with Mr. Ashraf KP, the founder and MD of WellCare.
2: That's a beautiful tagline, the care you can trust. We mean it. It's not come accidentally. We mean it. Because while we are in healthcare, definitely, first of all, customer, those who are coming to us, they are very important for us. And we should extend extra care to them. Then second comes definitely our team members, those who are with us all these years, or those who are joining new, definitely we have to extend the same care. And when it's coming to partners, directors, definitely we have to extend the same. So the care you can trust, we mean it. It's not simply a tagline. Yeah. We definitely mean it. Executive.
1: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive, every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m. अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबूसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबूसिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
2: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पारनी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज एयर अमान। लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcohol.
2: Oh no, fir se school.
3: अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
4: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: Oh no, phir se school. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
5: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड.

0: जी ऐसा हो सकता है क्या कि वीकेंड आए और आपकी कशिश आपके लिए टेक वाला शो ना लेकर आए? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। तो आज का भी जो शो है वो हम शुरू करते हैं। आप लोग अपना फोन उठाइए एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुझे मैसेज कर दीजिए, हाय हेलो गुड इवनिंग लिख दीजिए 3311063 पर। बाकी बहुत सारी फैक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारे टेक अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उसके लिए आपको बस चिपक के जो है बने रहना होगा अपने रेडियो सेट्स के साथ। तो बस वॉल्यूम बढ़ाइए, फिलहाल अगला गाना जो है वो इंजॉय कीजिए, थोड़ी सी देर में आती हूँ मैं एक अमेजिंग वाले टेक्नोलॉजी के फैक्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल है दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस। एग्जीक्यूटिव लेंस ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। In conversation with Mr. Ashraf KP, the founder and MD of WellCare.
4: That's a beautiful tagline, the care you can trust, we mean it. It's not come accidentally, we mean it. Because while we are in healthcare, definitely, first of all, customer, those who are coming to us, they are very important for us. And we should extend extra care to them. Then second comes definitely our team members, those who are with us all these years or those who are joining new, definitely we have to extend the same care. And when it's coming to partners, directors, definitely we have to extend the same. So the care you can trust, we mean it. It's not simply a tagline. Yeah. We definitely mean it. Executive.
3: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive.

कभी आप एक दिन जो है लैपटॉप खोले और उस लैपटॉप में स्क्रीन ही ना हो, डर जाएंगे आप, घबरा जाएंगे आप और आप कहेंगे कि जल्दी से इसे दुकान लेकर जाता हूँ, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं मिल रही है। फिर आपको रियलाइज होगा कि अरे आपके लैपटॉप पे तो स्क्रीन ही नहीं है, आपने लिया ही ऐसे था। वेलकम टू 106.3 रेडियो अलवर, मैं हूं आपकी कशिश और द टेक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तो 100% विदाउट स्क्रीन वाला जो लैपटॉप है वो मार्केट में आ चुका है, यानी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्क्रीनलेस लैपटॉप हैज अराइव्ड। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटिंग की नई दुनिया में। इसमें जो है सिर्फ कीबोर्ड है एंड आपको चश्मा लगाना है, उस चश्मे के थ्रू आप स्क्रीन देख सकते हो एंड बाकी आपके आसपास कोई भी जिसने वो चश्मा नहीं लगाया है वो स्क्रीन देख ही नहीं पाएगा। पता नहीं इस इनोवेशन का जो है मुझे और कोई एस्पेक्ट नहीं दिख रहा सिवाय प्राइवेसी के। तो अगर आप बहुत प्राइवेसी वाले इंसान हो कि आपको क्या कर रहे हो आप वो किसी को नहीं बताना है, तो ये वाला जो फीचर है आपके लिए अच्छा होगा, ये वाला लैपटॉप आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अगर आप किसी के साथ आपको आप किसी को कोई स्क्रीन पे कुछ जैसे दिखाते हो नॉर्मल लैपटॉप पे, वैसा आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी के साथ बैठ के लैपटॉप पे मूवी नहीं देख पाओगे। तो पता नहीं ये अच्छा है या नहीं है, आप बताओ आपको कैसा लगा ये आइडिया 3311063 पर। फिलहाल मैं जो है एक अमेजिंग गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, उस गाने के उस पार आऊंगी एक अमेजिंग वाला टेक फैक्ट लेकर। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

क्या हो जो अभी आप एक दिन जो है लैपटॉप खोलें और उस लैपटॉप में स्क्रीन ही ना हो, डर जाएंगे आप, घबरा जाएंगे आप और आप कहेंगे कि जल्दी से इसे दुकान लेकर जाता हूँ, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं मिल रही है। फिर आपको रियलाइज होगा कि अरे आपके लैपटॉप में तो स्क्रीन ही नहीं है, आपने लिया ही ऐसे था। वेलकम टू 106.3 रेडियो आलिपुर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तो 100% विदाउट स्क्रीन वाला जो लैपटॉप है वो मार्केट में आ चुका है, यानी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्क्रीनलेस लैपटॉप हैज अराइव्ड। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटिंग की नई दुनिया में। इसमें जो है सिर्फ कीबोर्ड है एंड आपको चश्मा लगाना है, उस चश्मे के थ्रू आप स्क्रीन देख सकते हो एंड बाकी आपके आसपास कोई भी जिसने वो चश्मा नहीं लगाया है वो स्क्रीन देख ही नहीं पाएगा। पता नहीं इस इनोवेशन का जो है मुझे और कोई एस्पेक्ट नहीं दिख रहा सिवाय प्राइवेसी के। तो अगर आप बहुत प्राइवेसी वाले इंसान हो कि आपको क्या कर रहे हो आप वो किसी को नहीं बताना है, तो ये वाला जो फीचर है आपके लिए अच्छा होगा, ये वाला लैपटॉप आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अगर आप किसी के साथ आपको आप किसी को कोई स्क्रीन पे कुछ जैसे दिखाते हो नॉर्मल लैपटॉप पे वैसा आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी के साथ बैठ के लैपटॉप पे मूवी नहीं देख पाओगे, तो पता नहीं ये अच्छा है या नहीं है। आप बताओ आपको कैसा लगा ये आइडिया 3311063 पर। फिलहाल मैं जो है एक अमेजिंग गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, उस गाने के उस पार आऊंगी एक अमेजिंग वाला टेक फैक्ट लेकर। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Idi Junge, King Khan, Yo Yo Honey Singer.

पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, मेरे साथ तो कई बार होता है कि किसी को गुस्से में बहुत लंबा चौड़ा मैं टेक्स्ट लिख रही होती हूँ और एक गलती हो जाती है और वो पूरा टेक्स्ट जो है वो इरेज हो जाता है। अब मेरे इमोशंस तो जा चुके हैं, मैं फिर से वैसा वाला टेक्स्ट लिख ही नहीं पाती हूँ। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए द टेक्स्ट शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। तो देखिए यार, अगर फोन में टाइपिंग करते वक्त कोई बड़ा टेक्स्ट जो है वो गलती से डिलीट हो जाए तो आईफोन में ना बस आपको शेक करना है एंड एंड्रॉयड में बस आपको कीबोर्ड पर दो फिंगर से जो है लेफ्ट स्वाइप करना है, टेक्स्ट वापस आ जाएगा। सो बस अपने फोन को शेक करो या अपने कीबोर्ड पे जो है स्वाइप करो और आपका टेक्स्ट वापस आ जाएगा, यानी अब आपके इमोशंस, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मुझ जैसा इंसान जो ज़्यादातर कंटेंट जो है वो अपने फ़ोन के फ़ोन के चैट बॉक्स पे लिखता है, नोटबुक पे लिखता है, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो ऐसे और फैक्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए यहीं पर रेडियो ऑल ओवर द टेक्स्ट शो पर। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके लिए, से ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑनर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

अब कतर में काफी सारी जगहों पे जो है वाईफाई के राउटर लगे होते हैं और वाईफाई जो है वो शेयरिंग में होता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार हमेशा हमारे पास इंटरनेट जो है वो कम क्यों आता है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, वाईफाई वेव्स हमेशा ना डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड ट्रैवल करती है। सो अगर आपने अपने राउटर को जमीन पर या कोने में ना कहीं छुपा के रखा हुआ है तो आपका जो है आधा सिग्नल जो है गायब हो जाएगा, आपको आधा ही सिग्नल मिलेगा। तो उसे हमेशा ना थोड़े ऊपर और सेंटर के साइड रखना। सो अब अगर आप ये ध्यान दीजिए कि आप जहां पर भी आपका वाईफाई राउटर लगा है आपकी बिल्डिंग में, तो क्या वो किसी कॉर्नर वाली जगह पर हुआ है या फिर एकदम ही जमीन से टिका हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको जो है इंटरनेट इसलिए भी कम मिल रहा होगा। बाकी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो वाले पर, अमेजिंग गाने एंजॉय करते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
2: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: T-E-C-A.

कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम कर रहे होते हैं और काम करते करते बहुत सारे टैब्स जो है अपने लैपटॉप पे ओपन कर लेते हैं, अपने सिस्टम पे ओपन कर लेते हैं, लेकिन फिर जब रियलाइज होता है कि यार अब हमें टैब्स बंद कर देने चाहिए, टैब्स बंद करते करते कोई इम्पोर्टेंट टैब जो है वो अक्सर बंद हो जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश शैन, आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती और मजे के तड़के के साथ। अब देखिए, अगर आप अपना कोई इम्पोर्टेंट ब्राउजर टैब जो है गलती से क्लोज कर देते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कीबोर्ड पर बस आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाना है, और अगर आपके पास मैक है तो कमांड प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाना है, वो आपका जो टैब जो ब्राउजर टैब बंद हुआ है वो वापस आ जाएगा, और फिर इसके बाद आप बस मुझे थैंक यू कह सकते हैं कि थैंक यू कशिश, इतनी मेहनत से जो एक वेबसाइट ढूंढी थी अपने अपने काम को पूरा करने के लिए वो भी गायब हो जाती, आपकी वजह से बच गए। 3311063 इज माई नंबर, आकर यहाँ पर मैसेज करो। अगर आपके पास कोई ऐसा हैक है, कोई ऐसा ट्रिक है तो वो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल मैं चलती हूँ, एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार। लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

वीकेंड पे मैं आती हूँ आपको इस टेक शो में कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जिससे सुनने के बाद ये जो है कंफर्म हो जाता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है हमारा फायदा हो रहा है ना, उसी तरह हमारा थोड़ा बहुत तो देखो नुकसान भी हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम बातचीत करते हैं टेक्नोलॉजी की लेकिन मस्ती और मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, साइबर फ्रॉड बढ़ रहा था, लोगों को लिंक्स पे क्लिक ना करने के लिए जो है हम बता रहे थे, OTP जो है वो शेयर ना करने के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब एक नए टाइप का फ्रॉड जो है वो आ गया। साइबर एक्सपर्ट्स ने एक नए तरीके के फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जहां पर स्कैमर्स या सोशल इंजीनियरिंग और मालवेयर की मदद से जो है जो कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, यानी जो हमारे टैप एंड पे वाले क्रेडिट या डेबिट कार्ड होते हैं, उनको क्लोन कर रहे हैं और बैंक को अलर्ट जाने से पहले ही जो है सिर्फ 13 मिनट्स में पेमेंट ऑथराइज हो जाता है एंड आपका जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से कट सकते हैं। सो आपको जो है ध्यान रखना है कि आप किसी भी अनजान इंसान को अपना कार्ड थोड़ी देर के लिए भी ना दो एंड अच्छी जगहों पे ही अपने कार्ड से पेमेंट करें और देखें कि सही कार्ड मशीन पे आपका जो कार्ड है वो टैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा भी शक हो तो आप चेक करिए एक बार कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बाकी सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। बाकी मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड रहिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: G-E-C-A

आता ही नहीं चला ना यार, आप लोगों से बातें करते करते कब 4 से 6 बज गए और अब मेरे यहाँ से जाने का और फन करने का वक्त आ गया है. क्योंकि देखो यार, वीकेंड तो मेरा भी है ना. आई नो आप लोगों से बात करने में, टेक्नोलॉजी के बारे में यू नो मस्ती मजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं अपना वीकेंड जो है वो आप ही लोगों के साथ बिताऊं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे द टेक शो, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती और मजे के तड़के के साथ. लेकिन अब मैं चलती हूँ और जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, टेक्नोलॉजी का संभल के इस्तेमाल कीजिए एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना. बाकी मैं जो है हर रोज आपके लिए अपना शो लाइफ मस्त है लेकर आती हूँ सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो प्लीज उसे जरूर बहुत सारा प्यार दीजिए एंड रेडियो ऑलिव पर जो है ट्यून इन रहिए. बाकी इंस्टाग्राम हैंडल जो है रेडियो ऑलिव का, वहां पर भी बहुत अमेजिंग वाली वीडियोस जो है आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर भी जाओ एक बार चेकआउट कर लो. बाकी मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वीकेंड एंजॉय करते रहना, हैप्पी वीकेंड, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 एफएम. यस, मुस्कान इज हियर और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. भाई फ्राइडे की ना बात ही अलग है. फ्राइडे को सेम चाय लेकिन टेस्ट बेटर लगता है, सेम ट्रैफिक लेकिन इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती, और फोन पे बॉस का मैसेज आ भी जाए तो लगता है कि यार आज तो वीकेंड है, कल देख लेंगे. सो फ्राइडे ऑलरेडी शाम हो चुकी है एंड आई एम श्योर आप ऑलरेडी बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रहे होंगे. थर्सडे इवनिंग से लेके हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है. एक्सपेक्टेशन से ना ज्यादा बनता है, कैलेंडर से कम बनता है ये फ्राइडे. सो आपको पता होगा कि अगले फ्राइडे और सैटरडे जो भी हो रहा है वो बहुत ही अलग चीज़ है. मतलब थर्सडे को हम प्लान कर लेते हैं कि फ्राइडे सैटरडे क्या करना है. सो किसी के लिए ब्रंच रेडी है, किसी के लिए मॉल प्लान्स हैं, किसी के लिए मूवी प्लान्स हैं, और कुछ लोगों का प्लान है कि कोई प्लान नहीं है. और वो कैटेगरी मेरी वाली कैटेगरी है, और ऑनेस्टली वो भी मुझे लगता है कि बेस्ट प्लान होता है. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. फ्राइडे को आपका जो मूड है वो फर्स्ट मतलब क्या प्लान करता है? ऑफिस का लैपटॉप बंद करना ऑफकोर्स, फैमिली का मैसेज, और उसके अलावा ये आपको लगता है कि यार चलो भाई वीकेंड ऑफिशियली शुरू हो गया और दिल की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी के पांच दिन जब आप काम कर रहे होते हो तब आपके दिल कुछ भी कहे आप सुन नहीं पाते. सो मैं हूँ मुस्कान और आज का मूड बिल्कुल सिंपल है. नो रश, नो प्रेशर, बस गुड म्यूजिक और गुड कॉन्वर्सेशन. और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मुझे बताइए 3311063 पर कि आपके क्या प्लान्स हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ. कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में थर्ड प्लेस का. होम भी नहीं और ऑफिस भी नहीं, थर्ड प्लेस. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड. फर्स्ट प्लेस तो आपका होम होता है, ठीक है. सेकेंड प्लेस इज वर्क और थर्ड प्लेस क्वेश्चन मार्क. वो जहाँ जहाँ आप बिना किसी खास रीजन के चले जाते हो, आपको वो कोई यू नो थर्ड प्लेस बन जाती है आपकी. जैसे कि मीटिंग्स नहीं करनी, कोई काम नहीं है, बस जाना अच्छा लगता है तो आप चले जाते हो. किसी के लिए वो जिम होता है, किसी के लिए वो सैलॉन होता है, किसी के लिए कोई फेवरेट कैफ़े होता है, तो किसी के लिए कोई फेवरेट फूड वाली जगह होती है, कोई रेस्टोरेंट होता है, और कुछ लोगों का तो एक पर्टिकुलर कॉफ़ी शॉप में फेवरेट कॉर्नर होता है, मतलब उसी कॉर्नर में जाके बैठना होता है, और किसी के लिए किसी दोस्त का घर होता है जहाँ वो बैठेंगे, यू नो गप्पे मारेंगे, कोई कैफ़े में जाएंगे, कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, और वेटर भी शायद बिना पूछे वो बोल देता है कि यार वही चाहिए मैम, सेम एज यूजुअल. एक्चुअली ये प्लेसेस ना हमारी रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं, बिकॉज दे गिव अस अ सेंस ऑफ फैमिलैरिटी एंड बिलोंगिंग्स. सो कतर में भी आपको कोई ऐसी जगह ज़रूर पसंद होगी जहाँ जाते ही आपको लगता है कि हाँ ये मैं थोड़ा यू नो फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दिस इज़ लाइक फेवरेट प्लेस. और मुझे बताइए कि आपका कतर वाला वो थर्ड प्लेस क्या है, किसी का घर, कोई जगह, कोई कैफ़े. सो फटाफट से बताइए, नंबर इज सेम 3311063. दिस इज़ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड. जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, एग्जीक्यूटिव ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. In conversation with Mr. Ashraf KP, the founder and MD of WellCare.
2: That's a beautiful tagline, the care you can trust. We mean it. It's not come accidentally. We mean it. Because while we are in healthcare, definitely, first of all, customer, those who are coming to us, they are very important for us. And we should extend extra care to them. Then second comes definitely our team members, those who are with us all these years, or those who are joining new, definitely we have to extend the same care. And when it's coming to partners, directors, definitely we have to extend the same. So the care you can trust, we mean it. It's not simply a tagline. Yeah. We definitely mean it. Executive.
1: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive, every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m.
3: यार, मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
4: क्या? कैसे?
3: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
4: रोज मिलता है क्या?
3: हाँ, रोज मिलता है.
4: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: Radio

बॉलीवुड ने एक चीज मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिखाई है हमें, जो मूवी ऑलमोस्ट वैसे बनी ही नहीं थी। कभी सोचा है, मतलब जिस एक्टर को किसी आइकॉनिक रोल में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो रोल एक्चुअली किसी और के पास जा सकता था। और फिर सोचिए कि अगर कास्टिंग चेंज हो जाती तो हमारी फेवरेट मूवीज की पूरी मेमोरी चेंज हो जाती, क्योंकि एक्टर सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोलते भाई, वो पूरे कैरेक्टर का फेस बन जाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर रोल में एक एक्टर की एंट्री, उसका डायलॉग डिलीवरी, उसका हेयर स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। और बॉलीवुड में ऐसे काउंटलेस कास्टिंग स्टोरीज हैं जहां रोल्स के लिए दूसरे एक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। तो आज इमेजिनेशन का गेम खेलते हैं। अगर आपको बॉलीवुड की एक आइकॉनिक मूवी की कास्टिंग चेंज करने का चांस मिल जाए तो कौन सी मूवी और किसको कास्ट करोगे आप? सो आई वॉज थिंकिंग कि यार शाहरुख खान की इतनी सारी ब्यूटीफुल मूवीज हैं, मान लीजिए अगर किसी मूवी में शाहरुख की जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो आप कौन सी मूवी का कौन सा एक्टर चेंज करते? आपका आंसर सुन के किसी बॉलीवुड फैन का दिल भी टूट सकता है, याद रखिएगा। 3311063 इज माय नंबर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड। व्हाट्सएप खुला हुआ है, लेट्स रिकास्ट बॉलीवुड। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: ओह नो, फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स.

ओके, आज थोड़ा पर्सनल बातें करते हैं. आपका फ्रिज कैसा है? बिकॉज मुझे लगता है कि फ्रिज किसी भी इंसान का सीक्रेट बायोग्राफी होता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड. ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी या फिर जब मैंने पहले जॉब स्टार्ट किया था तब मैं शेयरिंग जगह पर रहती थी जहां पर फ्रिज और किचन एक ही होता था. सो एक फ्रिज खोली और अंदर 14-15 तरह की सॉसेज आपको दिखेंगी. 3 डिफरेंट चीज पैकेट होंगे, एक आधा लेमन जो पता नहीं कब से वहां पर पड़ा हुआ है और एकदम सूख चुका है. मतलब हर किसी की पर्सनालिटी आपको फ्रिज के सामान से पता चल जाएगी. तो फ्रिज में क्या होता था, बेसिकली हर किसी का अपना एक कॉर्नर होता था कि भाई फ्रिज में एक पर्टिकुलर पर्सन का सामान यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे. और किसी एक का तो फ्रिज का एक पार्ट इतना बुरा दिखता था कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक सामान निकालना कैसे. और किसी दूसरे का फ्रिज खोलिए तो सब कुछ परफेक्टली अरेंज, वेजिटेबल एक साइड हैं, फ्रूट्स एकदम एक साइड रखे हुए हैं, सब कुछ वॉश्ड है, ड्रिंक्स प्रॉपरली लाइंड अप हैं, लेबल्स तक लगे हुए हैं. और तीसरा फ्रिज खोल के मतलब देखोगे किसी तीसरे पर्सन का तो उसमें सिर्फ पानी, दूध और चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं मिलता. बस मिनिमलिस्ट लाइफ. तो मुझे लगता है कि फ्रिज एक्चुअली बताता है कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं. ठीक है, जब मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं तो फ्रिज में हमेशा हेल्दी चीज़ें लेकर आने की कोशिश करती थी. नो शुगरी ड्रिंक्स, नो शुगरी थिंग्स, बस चॉकलेट्स का थोड़ा सा मुझे हाँ शौक है, लेकिन वो भी मैं बहुत ही कम खरीदने की कोशिश करती थी. सो अगर मैं आपके फ्रिज की बात करूँ तो आप मुझे बताइए कि सबसे कौन सी ऐसी एम्बैरेसिंग चीज़ है जो आपको लगती है कि यार फ्रिज में ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए. कोई एक्सपायर्ड सॉसेस, कोई हाफ ईटन केक, या वो मिस्टीरियस डब्बा जो पता नहीं कितने दिन पहले आपने फ्रिज में रखा था. सो व्हाट्सएप पे सच बोलना, फ्रिज के बारे में जरूर बताना. अपनी सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर सेम 3311063. स्टे ट्यून्ड, यो बिंदास.

यार जब गूगल मैप नहीं था तो लाइफ ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। आप सिटी में जाते थे, रास्ता तो पता नहीं होता था, किसी से पूछ लो भैया ये रोड किधर जाएगी वाला वो डायलॉग हर जगह आप पूछते थे, और वो बोलेंगे कि बस सीधा जाइए फिर लेफ्ट फिर ये यू नो आपको एक लैंडमार्क दिखे और उसके बाद एक यहाँ पर शोरूम है और उसके सामने से राइट ले लीजिए, और आप सोच रहे हो कि भाई ये तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। सो आज गूगल मैप्स बोलते हैं 500 मीटर्स में टर्न, 200 मीटर्स, 100 मीटर, और अगर गलत टर्न ले लिया तो रिकैलकुलेटिंग। ह्यूमंस मतलब उनके पास पेशेंस नहीं, लेकिन गूगल मैप्स के पास आज भी उतना ही पेशेंस है। लेकिन कभी कभी बिना डेस्टिनेशन के ड्राइव करना भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली वीकेंड पे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। तो मैं सोच रही थी कि जब हम बिना डेस्टिनेशन के ऐसे निकल जाते हैं ना कि चलो सोचते हैं कहाँ जाना है, तब आता है असली मज़ा, लेकिन वो भी उन्हीं को जिनके पास गाड़ी है। भाई मुझे तो करनी होती है कैब, तो मुझे ना अपनी डेस्टिनेशन पहले से ही वहां पर भरनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि कब वो दिन आएगा जब मैं बिना डेस्टिनेशन के बस गाड़ी लेके निकल जाऊंगी। सो आप मुझे बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं तो क्या सोच के निकलते हैं वीकेंड्स पे, स्पेशली कोई रैंडम कैफे, कोई नई स्ट्रीट, कोई ब्यूटीफुल व्यू, और एक स्टोरी बन जाती है। सो लाइफ टाइम कब आप जानबूझकर आपने कभी लास्ट टाइम ऐसा किया हो कि एक्सीडेंटली आप लॉस्ट हो गए और उसके बाद कुछ अच्छा मिल गया, कोई अच्छी प्लेस, कोई अच्छा पर्सन, और कोई मस्त स्टोरी बन गई हो, बताइएगा जरूर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Happiness free में बट रही है.

बॉलीवुड की बात कर रहे थे और इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए कि यार लोग DDLJ के शाहरुख से लेके यू नो गजनी के आमिर खान तक को रिप्लेस करने की बात कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। बॉलीवुड में ना हीरो की एंट्री नॉर्मल एंट्री नहीं होती। हीरो आ रहा है तो हवा बदलना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक आना चाहिए, कैमरा स्लो हो जाना चाहिए और कभी कभी तो हीरो के पीछे इतने लोग चल रहे होते हैं कि लगता है पूरी कॉलोनी वेलकम करने के लिए आई है। बट थिंक अबाउट इट, फिल्म मेकर्स कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है बॉस। एक एंट्री में ही जो डायरेक्टर है वो बता देता है कि ये कैरेक्टर पावरफुल है, फनी है, रोमांटिक है, डेंजरस है या बिल्कुल पागल है। मतलब सिर्फ आप एंट्री से पहचान जाओगे, पूरा डायरेक्टर जो है वो ऐसा डिजाइन करते हैं। और बॉलीवुड ने तो आइकॉनिक एंट्रीज का पूरा म्यूजियम बना रखा है। सो आज एक बहुत ही फन डिबेट करते हैं, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक हीरो एंट्री कौन सी है? और सिर्फ हीरो नहीं, बेस्ट विलन एंट्री भी आप बता सकते हो। नाम बताओ मुझे 3311063 पर और देखते हैं कि कतर के लिसनर्स का बॉलीवुड टेस्ट कितना डेंजरस है। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: ओह नो, फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर rewards.

इमेजिन कीजिए आपका 15 साल का ओल्ड वर्जन सडनली आपके सामने आ जाता है व्हेन यू आर जस्ट 15 इयर्स ओल्ड. वो आपको देखता है, आपका घर, आपका करियर, आपका फोन, आपकी लाइफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर वो आपसे पूछता है, सो हम बड़े होकर क्या बने? और क्या जवाब दोगे आप उसे? मतलब आई एम ऑलमोस्ट यू नो इन माई लेट 20s, सो मे बी 15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं तो खुद को देख के बहुत सरप्राइज हो जाऊंगी यार कि मैं कितनी अच्छी जगह पर आ गई हूँ. वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई शायद यही सोचेगा, जब हम 15 साल के थे तब हमारे सपने अलग थे, हमारी चीज़ें अलग थी. मतलब एक्सक्यूज मी, ये वो लाइफ तो बिल्कुल नहीं है जो मैंने इमेजिन की थी व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड. दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, राइट? टीनेज में हम लाइफ को एक स्ट्रेट लाइन समझते हैं, फिर लाइफ आती है और कहती है कि प्लॉट ट्विस्ट. और ऑनेस्टली कभी कभी वो प्लॉट ट्विस्ट ही बेस्ट पार्ट होता है. सो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है. अगर आप अपने 15 साल पुराने सेल्फ को सिर्फ एक सेंटेंस बोल सकते तो आप क्या बोलते? डोंट वरी, या फिर एंजॉय करो, या ट्रस्ट योर सेल्फ, या फिर प्लीज इतना ओवरथिंक मत किया करो. बाय द वे, व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड मैं बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करती थी. मुझे तो पता भी नहीं था ओवरथिंकिंग होती क्या है. मैं तो बस एंजॉय करती थी और लाइफ के बारे में अलग अलग तरह के सपने देखती रहती थी. आप बताइए, व्हेन यू वर 15 तो अब आप क्या सोचते थे अपने बारे में? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलम, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

दुनिया में ना कलेक्टर्स की कोई कमी नहीं है। कॉइन कलेक्ट करने वाले तो कॉमन है, स्टैम्प्स भी, किताबें भी, लेकिन कुछ लोग भाई अलग ही लेवल के होते हैं। किसी को होटल की कार्ड कलेक्ट करना पसंद है और किसी को फ्रिज मैग्नेट्स, किसी को ओल्ड पुरानी कोई रिसिप्ट्स जो होती है वो, और किसी को मूवी टिकट्स, किसी को परफ्यूम के टाइनी बॉटल्स। और मुझे यकीन है कि आपके घर में भी एक ऐसा कलेक्शन जरूर है जिसका कोई पर्टिकुलर यूज तो नहीं है लेकिन थ्रो करने का दिल ही नहीं करता। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू। और शो का नाम है ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। सो यहाँ पर फ्राइडे का दिन और अलग अलग दिमाग में चीजें आ रही हैं कि यार ये करना था, वो करना था, और अलग अलग दोस्तों से बात भी होती रहती है, यू नो फ्राइडे इज फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो कई बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन हो जाती है। सो क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं समटाइम्स वो मेमोरी बन जाते हैं। एक ओल्ड टिकट देखा और सडनली याद आया कि ओ ये ट्रिप हमने 2018 में की थी और आज देखो 2026 चल रहा है, कब 8 साल निकल के पता भी नहीं चला। एक रैंडम कीचेन और पूरा स्कूल का ट्रिप याद आ जाता है। सो टुडे आपके घर के सबसे रैंडम कलेक्शन जो है वो क्या है, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आई एम श्योर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कलेक्ट होती होंगी। और प्लीज ये मत बोलना मेरे हस्बैंड के एम्प्टी बॉक्सेस, मतलब यार ये तो बहुत ही कॉमन है। ऑल्दो आई नो मेनी ऑफ यू हैव दैट कलेक्शन, बट आई नो मतलब ये भी एक डिफरेंट लेवल का क्रेज है। बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कॉल सोनी है।
1: सॉन्ग्स जो है वो मेमोरीज क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी कभी साउंड भी हमें टाइम मशीन में भेज देता है। भाई घर की वो प्रेशर कुकर की आवाज, या फिर वो सडनली चाइल्डहुड किचन की कोई याद, या फिर स्कूल बेल और वो हमारा फर्स्ट पीरियड जो हमारे स्लीपी चेहरे के साथ दिखता था, रेलवे की अनाउंसमेंट्स या ट्रेन की कोई जर्नी याद दिला देता था, सीलिंग फैन की वो आवाज जो आपको नानी का घर याद दिला देती थी, बारिश की बूंदे विंडो पर आती आपको एक कप चाय की याद आ जाती थी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है हैप्पी वीकेंड्स। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि साउंड और मेमोरी का ना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है ब्रेन एरिया इन्वॉल्व से और इमोशन और मेमोरी से। इसीलिए कभी एक आवाज सुनते ही ना हम बोल देते हैं ओ माय गुडनेस, ये तो बचपन की याद आ गई। सो आज आप बताइए, गाना नहीं कोई मेमोरी प्ले करते हैं, कौन सी आवाज आपको इंस्टेंटली किसी जगह या किसी इंसान के पास लेकर जाती है। सो मुझे तो वो आवाजें आज भी याद आती हैं जब घर में हम मतलब सिबलिंग्स लड़ाई किया करते थे और मम्मी उस लड़ाई को कम करने के लिए दोनों को ही इक्वली डांटा करती थी और खाना खाने से पहले वो प्यारी सी आवाज। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना आपको यू नो पुरानी यादों में ले जाती हैं। आज भी जब हम घर जाते हैं तो हमें सेम फील होता है। आप बताइए कि आपके लिए वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कुछ भी याद आ जाता है फटाफट से। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, नंबर है 3311106 3 जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: भाई एक तो होते हैं मूवी लवर्स जिन्हें एक्चुअली मूवी देखना पसंद है, और एक होते हैं भाई डेंजरस मूवी लवर्स। मूवी स्टार्ट होने से पहले डायलॉग्स बोल देते हैं, एक्टर स्क्रीन पे आने से पहले बता देंगे कि अब ये यहाँ से लेफ्ट जाएगा, और बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है ये, अब विलन आएगा और अब ऐसा होगा वैसा होगा। आपको भी कोई ऐसी मूवी पता होगी जिसकी स्टोरी नहीं टाइमिंग तक आपको याद होगी। भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता, मैं एक मूवी को दो या तीन बार भी देख लूंगी ना तो मुझे लगेगा कि मैं याद तो नहीं कर सकती। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। आपको पता है किस मिनट पे क्या डायलॉग आएगा, कब गाना आएगा, कब हीरो यू नो ये डायलॉग बोलेगा, कब बच जाएगा, कब किसी हीरोइन के पास जाएगा और कब इंटरवल होगा। दैट्स एक्चुअली व्हाई रीवॉचिंग फील्स सो कंफर्टिंग, मतलब आपको अनसर्टेनिटी नहीं होती, आपको पता होता है कि अब क्या होने वाला है। तो जब भी कोई फैमिली टाइम है, कोई फ्रेंड्स वाला टाइम है, कोई पार्टी चल रही है, तो आप वही फैमिलियर मूवी लगाना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि यार फोकस तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो कोई ऐसी चीज देखते हैं जो ऑलरेडी हमने देखी हुई है। सो आज का अल्टीमेट बॉलीवुड क्वेश्चन ये है कि आपकी रिमोट जो है वो मेरे हाथ में है तो मूवी चेंज नहीं होगी वाली फिल्म कौन सी है। सो बताइए मुझे 3311063 पर, अगर आप डायलॉग भी कंप्लीट कर सकते हैं तो समझ जाओ यू आर ऑफिशियली अ फैन। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
2: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

हर बार मैं आपसे वीकेंड प्लान्स पूछती हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक आइडिया देती हूँ. मैं आपको सिर्फ 10 रियाल दूंगी और आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. इससे अपनी परफेक्ट फ्राइडे इवनिंग बनानी है आपको. मतलब सिर्फ 10 रियाल, ना कोई शॉपिंग, ना कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ना कोई फैंसी प्लान. व्हाट विल यू डू? मे बी एक कड़क चाय, बीच वॉक, फेवरेट स्नैक्स और ओल्ड गाने सुन के आप हो सकता है कि अपनी गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाओ, या मेट्रो से ड्राइव पर निकल जाओ, मतलब मेट्रो से घूमने निकल जाओ, या किसी दोस्त को बुला लो रोड साइड चाय के लिए. अब क्योंकि समटाइम्स फन का बजट बहुत बड़ा नहीं होता, बस इमेजिनेशन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए. और मुझे लगता है कि वीगन का असली टैलेंट भी यही है, ऑर्डिनरी चीज़ों को स्पेशल बनाना. ठीक है, सो कतर, योर चैलेंज इज सिंपल. सिर्फ 10 रियाल में आप अपनी परफेक्ट फ्राइडे इवनिंग कैसे डिजाइन करोगे? क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी ना, मतलब ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस्ट आंसर को मैं ऑन एयर भी शेयर कर सकती हूँ. ठीक है, सो फटाफट से मुझे बताओ 3311063 पर. और प्लीज कोई ये मत कहना कि 10 रियाल में तो कुछ नहीं होता. क्रिएटिव लोगों के लिए 10 रियाल भी बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है. ठीक है, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
4: कूल सॉन्ग।

0: आप?
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

जाने से पहले एक थॉट शेयर करके जाती हूँ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड. हम सबके पास ना एक सेंटेंस होता है, यार वो पुराने दिन कितने अच्छे थे ना, स्कूल के दिन, फिर कॉलेज के दिन, पहली जॉब, पुराने दोस्त, पुराना घर, पुरानी शाम. लेकिन कभी सोचा है, हो सकता है आज के दिन भी फ्यूचर में किसी को याद आने वाला हो. मे बी 10 साल बाद आप इसी फ्राइडे को याद कर रहे होगे, या घर, या ये शहर, या ये कंट्री, या ये दोस्त, या ये कॉन्वर्सेशन. जो आज नॉर्मल लग रहा है, कल वही आपको ना नॉस्टैल्जिया हो सकता है. इसीलिए इस वीकेंड हर मोमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर प्रेजेंट रहने की जरूरत है. चाय यानी कि कड़क गर्म है तो इंजॉय कीजिए, फैमिली सामने है तो बात कीजिए, फ्रेंड्स फोन पर आपको यू नो इन्वाइट कर रहे हैं, वो वीडियो कॉल और नॉर्मल कॉल, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि मे बी दीज आर गुड ओल्ड डेज, वी हैवंट रियलाइज्ड आर गुड येट. मैं हूं मुस्कान, आपके साथ ये ब्यूटीफुल फ्राइडे शेयर करने के लिए थैंक यू. अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट वीकेंड पर मिलेंगे. लेकिन उससे पहले कल लेकर आऊंगी मिडनाइट लाउंज, सेम फ्रीक्वेंसी, नई स्टोरीज, नई स्माइल्स. तब तक के लिए इंजॉय करते रहिए सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: Yeah. This one comes straight from under the dancer.

हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाज के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जिया बिंदास. चांदनी